करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।

0: physical locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग दुनिया भर किसी भी कैमरे चेक करो अपने फोन के राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन

0: जी थैंक यू मनजीत। 9054500054 दुआबा ट्रैवल, जिन्होंने भी इंडिया जाना तो दुआबा ट्रैवल की एक डील सुनो। टोरंटो टू अमृतसर, टोरंटो टू अमृतसर नवंबर के दूजे वीक जाओ। एक स्टॉप है, दो टैची है, 1295 के। वाह, दुआबा ट्रैवल 9057967800 9057967800 दुआबा ट्रैवल जी 0777। हेलो,
1: कनेडियन
0: कंपनी है माय चॉइस, उन्होंने एक स्टडी की ब्रैम्पटन अंटेरियो सब तो टॉप ते है रोड रेज करके।
1: अगू ना दो लेना इन्होंने ना वारी वारी बंद की, मान लो एक टाइम ते राइट बंद की, मैं लेफ्ट च जान जाए ठीक है। कवर कर ली जगह, मैं ठीक है अगे जा के थोड़ी 200-300 मीटर ते जा गए ओदे वाली बंद हो गई। बाद जी मेरे मेरे वाल जगह मंगन दा खड़ा रहा मैं नवी जगह दिंदा, मैं भी काफी देर ओनू खज्जल कीता।
0: नहीं देखो बड़ा खज्जल ना करा करो, अगले फिर ताही मगर आंदे आ।
1: नहीं वीरे फिर जिद्दां अपनी वारी जदों जान के पता भी जगह दे भी दित्ती, बाद च जदों मैं कर लगा चेंज लेन ते उहने अगे लिया के ते लाती जान के गड्डी ते इग्नोर जिहा मारन लग पिया। ते मैं कहा ठीक है फिर कोई नहीं, मैनूं नहीं ना पता अगे वी बंद आ, अपनी वारी आई ते फिर चीका मार गया।
0: चलो ठीक है, गल मैं ये कह रहा कि किस नाल बाली कोई बहसबाजी या कोई अगला आ रहा दे दो रास्ता यार अपना की लेना देना ठीक है ना। सो बियॉन्ड आईवर दी कुछ एक डीलां देने थानू ते आ लो साडे नाल। बियॉन्ड आईवर तो रोमी हुणे जुड़ चुके ने, किसी ने भी अगर प्रिस्क्रिप्शन दिया या कोई तुसी डिजाइनर सनग्लासेस लेनिया ने, तुसी बच्चियां दा या तुसी आप दा आई एग्जाम करवाना, ता नंबर वन लोकेशन बियॉन्ड आई वेयर ते तुसी एक बार गेड़ा जरूर लगाओ। हंबर वेस्ट ते गोरवे दे कोर्नर ते 9300 गोरवे ड्राइव, पंजा विचों पांच नंबर जांदे आ भी, ऑनलाइन भी देखोगे 5-star रेटिंग है, डायरेक्ट बिलिंग थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज नू करदे ने। सो बियॉन्ड आई वेयर तो रोमी साडे नाल ने। रोमी की हाल चाल?
2: ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਿਨਿਊ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀ ਸਪਰਿੰਗ, ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ ਨਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
2: ਜੀ, ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 30% ਆਫ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਗੁੱਚੀ, ਟੌਮ ਫੋਰਡ, ਵਰਸਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਲੀਨ ਦੇ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਆਫ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ ਗਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ $99 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਰੇਮ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਲੈਂਸਿਸ। ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਆਮ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕੇਜ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $99 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਮੰਥ। Progressive glasses, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 249 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ 500 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਇਟ ਫਾਰ 249 ਫਰੇਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਐਸਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 249 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ।
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
2: ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸਿਸ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਰੇਮ

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उहां के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जिहड़ा सारे फोक डांसिंग कोला जिहड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, उह है कुड डांस। ते बाकी होर जिहड़े फॉर्मन डांस दे हुण फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते इह है कुछ जिहड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तुसीं सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वो स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर की जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल च कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुड़ते हैं एक्ट, पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिहदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं। ये स्टैप करते करते जिहड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंदे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंदा है जो कन्ने ही सुनने के बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसी दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नु उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्ते तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपरे कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एको ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
2: 6478355 संजय बिरसा प्रोग्राम सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल तुसी संजय बिरसा प्रोग्राम दे विच कोई भी तुसी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तुसी अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना ते तुसी साडी टीम नाल संपर्क कर सकदे हो 6478355 6478355 2954 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हम 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca.
4: Nah.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
4: ओ रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां। सब तो इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉज अटेंड कीतियां। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
8: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ।
9: ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
10: ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੋ?
9: ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ।
10: ਲੋ ਭਾਜੀ, ਇਸਕਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ।
9: ਘੀ ਟੇਸਟ ਕੇ ਲੀਏ ਥੋੜੋ ਖਾਤੇ, ਘੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲੀਏ ਖਾਤੇ। ਮੁਝੇ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ,
10: ਨਾਨਕ ਘੀ ਭਾਜੀ,
9: ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਤੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਪਿਓਰ, ਇਟਸ ਨਾਨਕ।

0: मम्मी मम्मी भूख लगी है, बर्गर खाना है।
1: इतनी महंगाई है तो कुछ करी बना दे।
2: ओहो चिंता काते कर दे, तवा किचन ते तीन मिनी बर्गर सिर्फ ते सिर्फ $7 मिल रहे।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: License number 10394।

0: आज खुश बात हो गया
1: ओ ता होना ही है जब तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है
2: आज मेरे पास बिल लगे हैं प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी क्या तुम्हारे पास
1: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
3: चल क्या रहे यहां पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
5: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
7: घर तो आपां एड्डा वड्डा इन्ना सोना ले लिया हुण अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं
8: हां ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना फ्रिज स्टोव डिशवॉशर वॉशर एंड ड्रायर एलईडी टीवी सब इत्थों ही लवांगे इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया कोई भी अप्लायंसेस खरीदो पेमेंट भी 6 महीने च करनी है वो भी बिना किसे ब्याज दे होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828-905-450 2828
9: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ Cellular Point. More phones, more plans, more choice.
10: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
11: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers

डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-116।

तेरी जुदाई में तो चल नहीं होंदी। कैसी बात है, ये मुहब्बत की गल हो रही है, इश्क की गल हो रही है, उस इबादत की गल हो रही है, उस प्यार की गल हो रही है, उस नू एक दूजे दे जो मिलन का विछोड़ा पै जांदा है, उस वेले की गल हो रही है, तेनू मेरी जिहड़ी जुदाई है ना, वो जुदाइयां नहीं चल होंदियां। कहिंदे होंदे किसी नू ना कोई बददुआ देनी होवे, जा तेनू किते विछोड़ा पै जावे, ते पता उहनू पैंदा जिहदे नाल विछोड़ा पै जांदा है। जिस वेले इश्क दियां प्रीतां लगियां होंदियां ना, इश्क दी मुहब्बत दे विच एक दूजे चार अखियां दो हो जांदियां, ते मुहब्बत दे विच फिर तेरी जुदाई। हरजीत सिंह जी।

मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा। क्या यार लिरिक्स, क्या लिख गए जनाब वाणी है, क्या उन्होंने बातें। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, वाह।

0: वही खुदा है।
1: क्या बात है।
0: दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। वही खुदा है, वही खुदा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये चीज़ां मैनू याद है, मैं जिस वेले वसीम साहब गुलाम अली खान साहब के शो कराए सी, तकरीबन इसी चेयर ते बैठे से खान साहब भी आ गए, तो कहिंदे हुंदे सी बड़ियां चीज़ां ना जिंदगी दे विच इस तरह जो म्यूजिक तो बिना भी सुनने का नज़ारा आता है, तो आर्टिस्ट की पहचान करनी हो तो फिर थोड़ा जा म्यूजिक तो बिना पता लग जाता है, क्योंकि जिस वे म्यूजिक चलता होंगे फिर सज्जे खब्बे सुर हो जाए ना, पता नहीं लगता किसी, जो चंगे बंद समझ आते होंगे। तो खान साहब दी गल्लां कई इस तरह दी, मेरी जिंदगी दे मेरे ना काफ़ी टाइम वो गड्डी सफ़र कर रहे थे टोरंटो, जो दो तीन दिन मेरे को रहे से इतने, वो चीज़ा बड़ी चीज़ा असर कर देंदी है। और मैं समझदा कि इस फनकार नूं तुसीं अक्तूबर 16 नूं सुनना है पूरे बैंड दे नाल, पूरे ऑर्केस्ट्रा नाल। सब तो वड्डी गल है नुमान साहब, तुहाडा बैंड भी पूरा पाकिस्तान तो आया नाल, क्योंकि अपने जिहड़े मजिशियन हुंदे आ उन्हां नूं पता हुंदा अख दे इशारे नाल फिर कित्थे की करना।
1: बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी कि 100 कस्बी कसब कस्बी कहिंदे जिहनूं बहुत इलम याद होवे,
0: ठीक है,
1: 100 कस्बी ते इक पेती, अपने बंदे हुंदे, अपने म्यूजिशियन्स हुंदे, अपना बैंड हुंदा या वो मिथिये हुंदे या,
0: बिल्कुल सही गल,
1: ते वो अक्सर आर्टिस्ट आंदे या मतलब आंदे या कले कले आ जांदे इत्थों आके कर लिया उस तरह दा, हालांकि आर्टिस्ट बहुत अच्छे हुंदे उस तरह दा आउटकम नहीं दे पांदे, फीडबैक उस तरह दा नहीं आंदा, आवाम जिहड़ी आ डिप्रेस हो जांदी कि यार इहनां नूं तुसीं बहुत अच्छा सुनिया सी इत्थे आके इदां हो गया, ते ओह बट जो फिर अपने बैंड ना परफॉर्मेंस होर होंगी है,
0: क्या बात है,
1: मजा आता,
0: बड़ी अच्छी गल है। पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरा बैंड जिहड़ा कि स्पैशल तौर पर पाकिस्तान तो नाल पहुंचा है, गुरशरण मान साहब मेरी लाइन से हाजिर हो गया, जो स्पैशल तौर पर क्वाली नाइट अटेंड कर रहे। गुरशरण जी की हाल चाल है सर?
2: सताल जी, बहुत वधिया, तुसी सुनाओ, और साडे जिहड़े गैसट आए ने नूमन हैदर जी, इन्हां नूं वेलकम जी।
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर,
0: तैयारी हो गई सर पूरी आन दी सर?
2: हां जी बिल्कुल, एहो जे प्रोग्राम हुंदे ने जिन्हां नूं असीं मिस नहीं कर सकदे, एहो जे प्रोग्राम मिस करना समझ लो पाप ही है एक तरह दा, क्योंकि सुर वाले व्यक्ति तां मिलदे नहीं दुनिया च, बहुत घट ने।
0: जी जी जी,
2: दसदे हुंदे सी कि जिन्हां नूं इस जन्म विच सुर वाली गायकी मिलदी है उन्होंने पिछले जन्म विच मोती दान कीते हुंदे ने, और इन्होंने तो मेरा ख्याल गड्डिया के गड्ढे दान किए होने।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी गल है। और गुरशरण जी तुसी भी इस पार्ट ऑफ शो का हिस्सा हो, तुसी खुद एक बड़े वड्डे फनकार हो, बड़े वड्डे कैरेक्टर हो, बड़िया मूवीज दे च पंजाबी मूवीज दे च इन्होंने काम किया है, और तुसी अपने जिहड़े तुहानू प्यार करन वाले आ, तुहाडे प्रेमी आ, तुसी अपने वल्लों जिहड़े पंजाबी विरसा दे लिसनरशिप आ, पंजाबी विरसा दे परिवार दे जी आ, उन्हां नूं की कहना चाहोगे सर?
2: जी मैं तां इही कहांगा कि जेड़ी गल कन्ना विच जांदी है ना वो मिश्री वांगू घोल जांदी है, वो ओही सुनिया करो, बाकी बहुत कुछ दुनिया च हुण सुनन नूं आ गया ओनू थोड़ा जा इग्नोर करिया करो, परे रहा करो बाकी चीजा तो, गायकी सुर वाली सुनन दा ही मजा है। और मैनू ते हैरानी हुंदी है कि जेड़े साडे पंजाबी ऑडियंस ने इन्हां नूं कई बार सानू याद कराना पैंदा है एक दो बारी, एहो जिहा शो तां मतलब इह तां सोल्ड आउट है जी, मेरे वालों गारंटीड सोल्ड आउट है।
0: बड़ी मेहरबानी, और तुहाडा प्यार है, तुहाडा मुहब्बत है सर, और तुहाडे वर्गे जदों एक्सपर्ट्स जिहड़े कि इस शो दी शोभा करन, तारीफ करन, ते फिर डेफिनेटली जिहड़ा कि शो सोल्ड आउट होएगा, और तकरीबन दस दिने 80% 85% ऑलरेडी असीं शो खत्म कर बैठे हैं, ते 20% देख लो हुण किन्नी हुंदी है, हाथी लंघ गया ते बाकी की रह गया तुहानूं पता ही है, ते सारयां नूं इही मैसेज है टिकटां जिहड़ियां लैणियां जल्दी लै लो। और गुरशरण जी बड़ी मेहरबानी सर तुहाडी, थैंक यू वेरी मच,
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत वेलकम हैदर जी,
0: बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा टिकटां तुहानूं सिर्फ मेरे को मिलनियां, होर किसी को टिकटां नहीं मिलनियां, ये ना टिकटां होर कोई वेच रहा, ते क्योंकि मैनूं ही कॉल करोगे तुहानूं टिकटां मिलनियां, और ना असीं टिकटां किते होर रखियां, क्योंकि बहुत VIP गैसट जिहड़े इहदे च आ रहे, बहुत डॉक्टर्स आ रहे आ, और लॉयर्स बहुत ज़्यादा इहदे च आ रहे आ, अच्छे अच्छे साडे टोरंटो दे लॉयर आ, CPA अकाउंटेंट आ रहे आ बहुत ज़्यादा इहदे च, जे तुसीं भी चाहुंदे आ कहिंदे, मैं अगे भी जिक्र कर रहा सी, जिवें दा रंग होवे ना, रंग दे ढल जाइए रंग उदां दा बन जांदा, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਆ, 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ।
3: ਵਿਗੜ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
3: दोस्तों मैंने फिंगर बढ़ा ली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
4: बदनाम करती नाल मैं ते के ओ दी मिठी चोरी
3: ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार किसी शो मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864,
0: 905-358-0864, ढाबा ऑन द फॉल्स।

0: 20-25 परिवारों के अंदर खाते के अंदर ठा करके टूटू होती है एक ही दिन के अंदर, तो सारा निकल जाता है गंगा की तरह। हाँ जी ऐसा भी दिन आते हैं। हाँ जी पीछे ना रहिए, आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है ओंटारियो में कहीं भी रहते, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, चाहे आप पेंशन पे हैं, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ ऊबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर कुछ भी हैं, आप आसान से कोर्स करें, 20 घंटे आपने हफ्ते में ऑनलाइन करना है, दैट्स इट। तो लैट
1: मतलब तुसी दसो कि जिहड़े पेंशन वाले ने
0: हाँ जी
1: ओ किन्ने क तुहाडा हुण तक दा तजुर्बा, क्योंकि तुहानू 8-10 साल हो गए इस फील्ड दे विच, पहला मैनू भी नहीं पता कि पेंशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भी उन्होंने भी आ जाता, पर हुण पता लग्या कि बहुत जिहड़े जाण पछाण दे विचों सी जिहड़े पेंशन लैंदे सी उन्हां दी फंडिंग हुई, जदों फिर उन्होंने दस्सिया कि भाई सानू भी फंडिंग हो गई है, ते पहला बहुतों मैं लगता अवेयर ही नहीं सी अवेयरनैस नहीं सी पता उन्होंने, असं भी हाँ सानू भी नहीं पता किन्ने क लोग ने हुण जिहड़े पेंशन भी लै रहे हैं उन्होंने भी फंडिंग होंगी है, वो भी इस फंडिंग तो लाहा लै रहे हैं, किन्ने परसेंट है तुहाडे हिसाब नाल?
0: पहले अंकल आंटी आते हैं अपना कराते हैं, उनको अच्छी फंडिंग आती है क्योंकि उनके किड्स होते हैं, फिर वो अपने माता पिता का कराते हैं। अब तक छूट बहुत सारे लोग हैं जिनको मैसेज कर चुके हैं 8 साल में, बहुत सारे, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस देश में एज पे या जेंडर पे, तो सब लोग स्किल डेवलप करते हैं। वो हमें कहते हैं सर हम ताश खेलने जाते थे, अब हम फोन पे क्लास लगाते हैं, लैपटॉप पे क्लास लगाते हैं, 20 घंटे, ना एक ना टीचर है, सेल्फ स्टडी वाले आसान से कोर्सेज है, कोई चलाकी नहीं है, $50,000 से $1,70,000 हासिल करें, ऑनलाइन क्लास करें, साथ में स्किल भी आ गई, सर्टिफिकेट भी आ गया, फंडिंग भी आ गई, मेरे नहीं आपके खाते में, कोलैटरल फ्री लोन है सर, गारंटी नहीं है इसकी, कोई आपने घर की भी नहीं रखना, ना आपने गाड़ी की भी रखनी है, बैंक नहीं दे रहा, गवर्नमेंट आपके खाते में दे रही, गवर्नमेंट कट्स कर रही है हर चीज में, मिस ना करें, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा 14 अक्टूबर को, पीछे न रहिए, बहुत लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके ने, फंडिंग हासिल कर चुके ने, हमारी फीस काम होने के बाद 199 फ्लैट फीस है, ट्रांसपेरेंट फीस है, ठा करके एयर पे बताते हैं, और इतने लोग तो हमारे जो शो सुन रहे हो पहले से हमारे क्लाइंट्स हैं, 437-234-7175 प्रॉपर ऑफिस 6 बजे आपके लिए काम कर रहे हैं, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, 437-234-7175 437-264-3175
1: 437-234-7175 बहुत बहुत धन्यवाद नागौर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मान साहब मैं गीत की गल की, गीत थोड़ा सुना, मनमोहन वारस उन्होंने आवाज खुले खाते रखे यारियां पकाने लिए, आ चुको

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूसडे चना भटूरा वेडनेसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 905-794-8111 सिंपली डिलीशियस

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डिया नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ बैली मोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होने दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com